के तपाईँलाई तयारी सुन र असली चाँदीका गहना आवश्यक छ या पुरानो सुन रिफाइन गरी एक नम्बर बनाउनु परेको छ? यदि त्यसो हो भने सधैँ हामीलाई सम्झनुहोस्। मनोकामना सुन चाँदी पसल। कैनपुर छ कैनपुर बजार त्रि चौक प्रोभाइडर पदम रसाइली ममता रसाइली। सम्पर्क 9861237744 र 9153577775।

0: ओ मेरो फुलवारी, अब के छ त
1: विचार? के विचार? को फुलवारी? म त बहिनी।
0: बहिनी त साली, तिमी नै त मेरो फुलवारी।

0: お前ね、王子、王子、王子。おでかおきやね。ちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。
1: प्यार से दे रहे हैं रख लो
0: देख देख देख अरे और ये बाप रे बाप इस स्टाइल तो ब्लास्टिंग मारे लू हो दुचारी को क्या लिखवा ले लू का अरे रे ए ए
1: आ जिगर पलट

0: understanding the nation.
1: Manaslu World College, a home for future leaders. Jawahir Hill, Kathmandu.
2: यही फागुन 14 गते महाशिवरात्रि को दिन तपाईहरु को नजिक को सिनेमा घर में नेपाली कथानक चलचित्र लाज शरणम